0: वेलकम बैक टू एवरीबडी। एंजॉय किया आपने गाना, आप सुन रहे हैं रेडियो नायरा निर्वाणा नाइट्स एंड मैं हूँ सबके दिलों का चिराग। मेरा नाम है आरजे पराग, 7 से 10 में रहता हूँ आपके साथ, मिटाता हूँ आपका स्ट्रेस एंड बनाता हूँ आपके मूड को रिफ्रेश। फूड लवर्स के लिए धर्म से एक मायूस करने वाली खबर है। डाउनटाउन धर्म के सिटी हॉल प्लाजा पर पिछले 7 सालों से लोगों को बेहतरीन स्वाद परोस रहा प्यूट्रो रिकन रेस्टोरेंट KOKI हमेशा के लिए बंद हो गया है। हालांकि इसके चाहने वाले अभी भी मॉरिसविल वाली दूसरी लोकेशन पर जाकर इसके लजीज खानों का मज़ा ले सकते हैं, लेकिन ये मज़ा लेने के लिए उन्हें मॉरिसविल जाना पड़ेगा। एंड यार कुछ रहता है, वी डोंट नो कि क्या प्रॉब्लम है या फिर क्या है, लेकिन हाँ टेस्ट को तो बहुत लोग मिस करेंगे। थोड़ा जाना पड़ेगा दूसरी लोकेशन पर, बट अच्छा खाने के लिए दूर जाना कोई बड़ी बात नहीं है ऐसा मुझे लगता है। एंजॉय करते हैं अगला ये गाना।
1: आप सुन रहे हैं रेडियो नायरा 99.9 FM HD4 101.9 FM 1490 AM रेडियो नायरा पक्का देसी।

आज का प्लान क्या है? सेम रूटीन या कुछ थोड़ा स्पेशल? मॉरिसविल में अब ओपन है रच्चा बंडा फूड ट्रक। प्योर वेजिटेरियन, फ्रेश, लाइट और बिल्कुल फील गुड फूड। वॉक एंड चिल स्पेस, ह्यूज पार्किंग, नो स्ट्रेस, इजी एंट्री। एवरीडे ओपन बिटवीन 5 PM टू 10 PM मंडे टू संडे। तो दोस्तों को बुलाओ, चाय पे मिलो और बनाओ छोटी छोटी यादें जो याद रह जाए। 3611 डेविस ड्राइव, मॉरिसविल। कॉल करें 9842540111। रच्चा बंडा, एक बार आए तो रोज आए।

0: आपने एंजॉय किया ये गाना। एंड एजुकेशन वर्ल्ड की बात करें तो यूएनसी चैपल हिल प्रशासन ने अपनी सभी 275 डिग्री प्रोग्राम्स के रिव्यू के बाद एक बड़ा कदम उठाया है। क्या है कदम? तो यूनिवर्सिटी ने फिलहाल 4 ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम्स को लेकर होल्ड पर डाल दिया है और इन्हें पूरी तरह बंद करने का विचार किया जा रहा है, जिससे छात्रों के बीच खलबली मची हुई है। आपको क्या लगता है, क्या होना चाहिए? आप अगर स्टूडेंट है तो डेफिनेटली आप मेरे साथ ये बात शेयर कर सकते हैं। आपकी राय क्या है, क्योंकि आपकी राय काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, रेडियो नायरा के लिए। तो आपकी राय हमें बता सकते हैं एंड आपकी राय ज़रूर मैं ऑन एयर पहुँचाने का काम करूँगा। वेल, मौसम जो है वो अच्छा है एंड इस प्यार भरे मौसम में गाना तो बनता है। एंजॉय करते हैं अगला ये गाना।
1: आप सुन रहे हैं रेडियो नायरा 99.9 एफएम एचडी 411.9 एफएम 1490 एएम रेडियो नायरा, पक्का देसी पक्का लोकल।

0: आप सब लोग एंड कैसे चल रही है आपकी शाम। आप सुन रहे हैं रेडियो नायरा पर निर्वाणा नाइट्स। इंटरनेशनल ट्रैवल करने वालों के लिए आज एयर कनाडा से एक बड़ी खबर आई है। एयरलाइन ने आज से आरडीयू और वैंकूवर के बीच चलने वाली अपनी डायरेक्ट फ्लाइट सर्विस को अचानक सस्पेंड कर दिया है, जिससे एशिया और कनाडा की कनेक्टिंग फ्लाइट्स लेने वाली यात्रियों को अब दूसरे रूट्स का सहारा लेना पड़ेगा। वेल, इसके पीछे वजह क्या थी ये तो मुझे पता नहीं चला है अब तक, लेकिन जैसे ही पता चलता है तो डेफिनेटली आई विल लेट यू नो। लेकिन आपको कैसा लग रहा है, थोड़ी असुविधा हो सकती है या फिर कुछ और अच्छा हो सकता है? वॉट लाइक क्या सोच रहे हैं आप इसके बारे में? आप मेरे साथ ये डेफिनेटली शेयर कर सकते हैं एंड एंजॉय कर सकते हैं। अगला ये गाना सुनते रहिएगा।
1: आप सुन रहे हैं रेडियो नायरा 99.9 FM HD4 101.9 FM 1490 AM रेडियो नायरा पक्का दिस।

आज का प्लान क्या है? सेम रूटीन या कुछ थोड़ा स्पेशल? मॉरिसविल में अब ओपन है रच्चा बंडा फूड ट्रक। प्योर वेजिटेरियन, फ्रेश, लाइट और बिल्कुल फील गुड फूड। वॉक एंड चिल स्पेस, ह्यूज पार्किंग, नो स्ट्रेस, इजी एंट्री। एवरीडे ओपन बिटवीन 5 PM टू 10 PM, मंडे टू संडे। तो दोस्तों को बुलाओ, चाय पे मिलो और बनाओ छोटी छोटी यादें जो याद रह जाए। 3611 डेविस ड्राइव, मॉरिसविल। कॉल करें 9842540111। रच्चा बंडा, एक बार आए तो रोज आए।

आप सुन रहे हैं रेडियो नायरा बनिरवाना नाइट्स एंड कैसे चल रही है आपकी शाम। ग्लोबल और पॉलिटिकल न्यूज की बात करें तो कल राज्यसभा में पास होने के बाद आज भारतीय संसद के निचले सदन लोकसभा ने भी द प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट्स टू नेशनल ऑनर एमेंडमेंट बिल 2026 को पूरी तरह से हरी झंडी दे दी है। इस नए ऐतिहासिक कानून के तहत अब राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम का किसी भी तरह से अपमान करना एक गंभीर क्रिमिनल ऑफेंस माना जाएगा। ये नया जो निर्णय है ये पारित हो चुका है, मतलब हरी झंडी मिल चुकी है, इसे मान्यता जो है वो दी गई है। आपका क्या कहना है? एंड यस, लाइक देश का अपमान करना ये तो वाकई में एक गुनाह है और जो किसी ने भी करना नहीं चाहिए। एंजॉय करते हैं अगला गाना क्योंकि मौसम जो है वो बहुत अच्छा हो रखा है। आप सुन रहे हैं रेडियो नायरा 99.9 एफएम एचडी 411.9 एफएम 1490 एएम रेडियो नायरा, पक्का देसी पक्का लोकल।

0: अब रुख करते हैं बॉलीवुड की चकाचौंध भरी दुनिया की तरफ, जहां से आज की सबसे बड़ी और ऐतिहासिक ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। जी हां, रणबीर कपूर, साई पल्लवी और यश स्टारर देश की सबसे बड़ी पौराणिक फिल्म रामायण पार्ट वन का आधिकारिक ट्रेलर आज तड़के सुबह 4:15 AM को पूरी दुनिया में रिलीज कर दिया है। ट्रेल के विजुअल्स, भव्य सेट्स और VFX इतने ग्रैंड है कि आज सुबह से ही इंटरनेट पर फैंस पूरी तरह से क्रेजी हो चुके हैं। मतलब ये ह्यूज मूवी जो है वो पता चल रहा है कि, मतलब पता तो पहले से ही था कि कुछ तो भी बहुत ग्रैंड होने वाला है, लेकिन ट्रेलर देखने के बाद तो आउट ऑफ इमेजिनेशन लग रहा है कि ये जो होने वाला है रामायण पार्ट वन, ये बहुत ही यूनिक होने वाला है। सुनते हैं अगला ये गाना।
1: आप सुन रहे हैं रेडियो नायरा 99.9 FM HD4 101.9 FM 1490 AM।

आपने एंजॉय किया एक गाना एंड हम डिस्कस कर रहे हैं बॉलीवुड की कुछ खबरों के बारे में। आप सुन रहे हैं रेडियो नायरा पर निर्वाणा नाइट्स। रामायण ट्रेलर के ड्रॉप होते ही फिल्म में भगवान इंद्र का किरदार निभा रहे हैं एक्टर कुणाल कपूर। आपको कुणाल कपूर याद तो है ना, बहुत अच्छी अच्छी मूवीज उन्होंने की है। एंड कुणाल कपूर ने अपने सोशल मीडिया पर स्टार्स की जो है वो काफ़ी जमकर तारीफ की है। उन्होंने यश के रावण के लुक को बिल्कुल अविश्वसनीय इनक्रेडिबल और रणबीर कपूर को बिना किसी ईगो का एक बेहतरीन सुपरस्टार बताया है, जिसमें फिल्म को लेकर फैंस का एक्साइटमेंट जो है वो और भी बढ़ गया है। वाकई में मतलब ट्रेलर इतना ब्यूटीफुल है एंड ब्रह्म मुहूर्त पे ट्रेलर रिलीज किया है, ये एक अलग ऑब्जर्व करने जैसी बात है। एंजॉय करते हैं अगला एक गाना एंड बने रहिएगा रेडियो नायरा पर। आप सुन रहे हैं रेडियो नायरा 99.9 FM HD4 101.9 FM 1490 AM रेडियो नायरा।

0: वेल एंजॉय किया आपने गाना एंड बी टाउन की गलियारों से। आज और एक खबर आ रही है, हाल ही में शादी के बंधन में बंधे आमिर खान और गौरी अपने शादी के बाद आज पहली बार मुंबई एयरपोर्ट पर नजर आए, दोनों साथ में नजर आए एंड उनकी तस्वीरें जो है वो बड़े पैमाने पर वायरल हो रही है एंड कैमरे ने कैद किया है उन दोनों को, जिस तस्वीर में वो एक दूसरे का हाथ थामे दिखाई दे रहे हैं एंड बहुत खूबसूरत लग रहे हैं। इनकी तस्वीर जो है वो जमकर वायरल भी हो रही है, मतलब क्या कहूँ मैं यार, प्यार कहते हैं ना, प्यार कभी उम्र नहीं देखता, कभी कुछ नहीं देखता, वो सच में होता है क्या? ऐसा तस्वीर देखने के बाद लोगों की रिएक्शन है, मेरी रिएक्शन नहीं है। सुनते अगला है गाना एंड बने रहिएगा।
1: आप सुन रहे हैं रेडियो नायरा 99.9 एफएम एचडी 411.9 एफएम 1490 एएम रेडियो नायरा। पक्का पक्का।

0: Not every restaurant becomes an experience, but Soul Flavorscape of India is a journey through taste, tradition, and unforgettable flavors.
1: From crispy Delhi-style aloo tikki chaat, flavorful samosa chaat, to the signature Soul Dal Bukhara.
0: Enjoy fresh sizzling veg and non-veg starters paired perfectly with oven-fresh chur chur naan made with love and fresh ingredients.
1: Planning your birthday, wedding, graduation party, corporate gathering, or family celebration?
0: Ask about customized catering menus at reasonable prices. Crafted specially for your event with authentic Indian flavors everyone will love.
1: And don't forget the amazing custom cakes, beautifully designed and perfect for every celebration.
0: Whether it's dinner with family, chai with friends, or your next big event. Soul Flavor Escape of India. Escape into flavors. Experience the soul of India. Soul, where every dish is poetry. Visit us today at 301 Glenwood Avenue, 190, Raleigh. Call 919-900-7231 to reserve a table, order online or book catering services.
2: आज का प्लान क्या है? सेम रूटीन या कुछ थोड़ा स्पेशल? मॉरिसविल में अब ओपन है रच्चा बंडा फूड ट्रक. प्योर वेजिटेरियन, फ्रेश, लाइट और बिल्कुल फील गुड फूड. वॉक एंड चिल स्पेस, ह्यूज पार्किंग, नो स्ट्रेस, इजी एंट्री. एवरीडे ओपन बिटवीन 5 PM टू 10 PM, मंडे टू संडे. तो दोस्तों को बुलाओ, चाय पे मिलो और बनाओ छोटी छोटी यादें जो याद रह जाए. 3611 डेविस ड्राइव, मॉरिसविल. कॉल करें 9842540111. रच्चा बंडा, एक बार आए तो रोज आए.

0: अरे यार, ना उम्र की सीमा हो ना शादियों का हो बंधन, कितने भी कीजिए कोई दिक्कत नहीं है। आप सुन रहे हैं रेडियो नायरा बडिरवाड़ा डाइट्स, एंड बॉलीवुड के नए टैलेंट्स की बात करें तो आज मेकर्स के हवाले एक बड़ी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आई है। मशहूर डायरेक्टर इम्तियाज अली अपने अगली म्यूजिकल रोमांटिक ड्रामा फिल्म के लिए शर्वरी वाघ और वेदांग रैना की फ्रेश जोड़ी को कास्ट करने जा रहे हैं, जिसकी स्क्रिप्टिंग का काम पूरा हो चुका है। मतलब नया टैलेंट, मैं सच में कह रहा हूँ। शर्वरी को मैंने मूवी में देखा था, मूंजा नाम की उनकी मूवी आई थी, तब मुझे पता चला था शर्वरी के बारे में। एंड मूंजा में उनका रोल देखने के बाद वाकई में ऐसा लग रहा था कि शी इज़ लाइक अ टैलेंटेड गर्ल, एंड किसी भी तरह की भूमिकाएं ये निभा सकती है। फिल्म अल्फा में भी उनको अच्छा ब्रेक मिला है, एंड देखते हैं अगली मूवी। इम्तियाज अली की मूवी है यार, कुछ तो अच्छा पक रहा है। एंजॉय करते हैं अगला ही गाना।
1: आप सुन रहे हैं रेडियो नायरा 99.9 एफएम HD4 101.9 एफएम 1490 AM रेडियो नायरा, पक्का देसी पक्का लोकल।

0: चलिए दोस्तों खबरों के बीच थोड़ा सा पीछे चलते हैं और याद करते हैं 90s के स्कूल के वो प्यारे दिन। याद है ना, जब आज की तरह बारिश होती थी तो कितने लोग अपनी रफ कॉपी के पन्नों को फाड़कर कागज की नाव बनाते थे बताना है आपको मुझे, और पानी में नाव को तैराते थे। वो स्कूल की आखिरी घंटी जैसे ही बजती थी एंड उसके बाद ऐसा लगता था कि दुनिया की सबसे बड़ी आज़ादी मिल गई है। बस्ता पीठ पर टांग कर चिल्लाते हुए घर की तरफ भागना, रास्ते में कुछ खरीदना, थोड़ी बहुत पॉकेट मनी मिलती थी, थोड़ी बहुत मतलब 1 रुपीज ऐसा कुछ है ना, तो भागना एंड वो मासूमियत भरे दिन, वो कागज़ की नाव चलाना एंड आज की दुनिया के स्मार्टफोन और ये चीज़ें बड़ी बड़ी कैंडीज मज़ा दे सकते हैं।
1: आप सुन रहे हैं रेडियो नायरा 99.9 FM HD4 101.9 FM 1490 AM रेडियो नायरा पक्का देसी।

0: रेडियो मेरा पर निर्वाण ऑन नाइट्स एंड मैं हूं सबके दिलों का चिराग। मेरा नाम है आरजे पराग। 7 से 10 में रहता हूं आपके साथ, मिटाता हूं आपका स्ट्रेस एंड बनाता हूं आपके मूड को रिफ्रेश 90s की यादों के बाद। चलिए सुनते हैं एक बिल्कुल नई, बेहद खूबसूरत और दिल छू लेने वाली छोटी सी कहानी। एक जंगल में एक बहुत बूढ़ा और घना पेड़ था। एक दिन एक छोटी चिड़िया आई और उसने पेड़ से पूछा, बारिश का मौसम है, क्या मैं तुम्हारे टहनी पर अपना घोंसला बना लूं? पेड़ ने साफ मना कर दिया। चिड़िया दुखी होकर दूसरे पेड़ के पास गई। दूसरे पेड़ ने हाँ कर दी। कुछ दिनों के बाद भयानक तूफान आया और पहला पेड़ उखड़कर नदी में बहने लगा। चिड़िया ने उड़ते हुए बहते पेड़ से कहा, देखा मना करने का नतीजा, भगवान ने सजा दी। पहला पेड़ मुस्कुराया और बोला, पगली मेरी जड़ें खोखली हो चुकी थी, मुझे पता था मैं इस तूफान में गिर जाऊंगा। मैं तुम्हें और तुम्हारे होने वाले बच्चों को खतरे में डालना नहीं चाहता था, इसलिए मैंने मना किया था। ये छोटी सी कहानी हमें सिखाती है कि जिंदगी में किसी की ना मतलब इनकार का हमेशा बुरा मत मानिए, क्योंकि हमें नहीं पता कि उसके पीछे, उसके ना के पीछे वो हमारा कितना भला सोच रहा है।
1: आप सुन रहे हैं रेडियो नायरा 99.9 FM HD4 101.9 FM 1490 AM रेडियो नायरा, पक्का देसी पक्का।

0: एंजॉय किया ये गाना एंड इसी खूबसूरत एहसास के साथ पेश है आज के कुछ बिल्कुल नए शेर जो आपके दिल को सीधे छू जाएंगे, मंजिलें मिल ही जाएंगी भटकते हुए ही सही। मैं क्या कह रहा हूँ थोड़ा आराम से सुनिएगा। मंजिलें मिल ही जाएगी भटकते हुए ही सही, गुमराह तो वो है जो घर से निकले ही नहीं। मतलब यार आप घर पे बैठ के बस सोच रहे हो मंजिल मिल जाएगी, अरे मिल जाएगी, तुझे सफर तो तय करना पड़ेगा ना दोस्त, तभी तो मंजिल मिलेगी। कैसा था आज का शेर है ना, वक्त कैसा भी हो मुस्कुराकर काट ही जाने में भलाई है, क्योंकि मैं कहता हूं कि मुस्कुराना हमेशा चाहिए, मुस्कुराने की कीमत नहीं होती। वक्त कैसा भी हो मुस्कुराकर काट ही जाता है दोस्त, अगर दिल में हौसला हो तो ये गुरुवार का दिन भी सुहाना बन जाता है मेरे दोस्त। 7 से 10 का ये टाइम आप लोगों के साथ कैसे बीत जाता है पता ही नहीं चलता है। कल मिलूंगा आपको रेडियो नायरा पर, निर्वाणी नाइट्स शो पर 7 से 10 मेरा शो चलता है, तो कल मिलते हैं, तब तक के लिए गुड नाइट, शाबा खैर।
1: आप सुन रहे हैं रेडियो नायरा 99.9 FM HD4 101.9 FM 1490 AM रेडियो नायरा पक्का दिस।

WCMC FM Holly Springs, 99.9 FM HD4, W270 DT Durham, 101.9 FM WDUR Durham, 14.

आज का प्लान क्या है? सेम रूटीन या कुछ थोड़ा स्पेशल? मॉरिसविल में अब ओपन है रच्चा बंडा फूड ट्रक। प्योर वेजिटेरियन, फ्रेश, लाइट और बिल्कुल फील गुड फूड। वॉक एंड चिल स्पेस, ह्यूज पार्किंग, नो स्ट्रेस, इजी एंट्री। एवरीडे ओपन बिटवीन 5 PM टू 10 PM मंडे टू संडे। तो दोस्तों को बुलाओ, चाय पे मिलो और बनाओ छोटी छोटी यादें जो याद रह जाए। 3611 डेविस ड्राइव, मॉरिसविल। कॉल करें 9842540111। रच्चा बंडा, एक बार आए तो रोज आए।

करती हैं निगाहें कि दिल को खबर ना हो, जख्म देती है ऐसा कि दर्द का असर ना हो। हमने समझा था इश्क़ मोहब्बत को ही ख्याले दिल, लगता है डर बस इतना वो मेरा हमशक्ल।

WMCFM Holly Springs, 99.9 FM HD4, W270 DT Durham, 101.9 FM WDUR Durham, 14.

मुझे लगता था नशे में तुझे भूल जाऊंगा, मुझे लगता था नशे में तुझे भूल जाऊंगा, तू और याद आई तो लगा ऐसा नहीं करते। तू और शराब दोनों एक जैसे हो, दोनों नशा करते हैं, वफा नहीं करते।

मैं पागल हूँ और बहुत पागल, मैं पागल हूँ और बहुत पागल, पर ये भी बात है कि दिल सच्चा है। छीन तो लेता तुझको सरेआम में, पर मसला ये कि शौहर तेरा आदमी अच्छा है।

0: पीढ़ियों से हम निभाते आए हैं 22 कैरेट खरा रिश्ता। आप भी एक नए रिश्ते की शुरुआत करें। राज ज्वेल्स नॉर्थ कैरोलिना।
1: आप सुन रहे हैं नारा 101.9 FM, 99.9 FM, SD 44 1090 AM, पक्का देसी पक्का लोकल।

0: लिविंग मींस इंडियन ट्रेडिशन. सुनते रहिए हेल्दी रहने की म्यूजिकल परंपरा ओनली ऑन रेडियो नायरा.
1: Hi, Carrie. Get ready for Dosa Bundi. Discover our signature variety dosas, including colorful carrot dosa.

ती हैं निगाहें कि दिल को खबर ना हो, जख्म देती है ऐसा कि दर्द का असर ना हो। हमने समझा था इश्क़ मोहब्बत को ही ख्याले दिल, लगता है डर बस इतना वो मेरा हम शक्ल ना हो।

आज का प्लान क्या है? सेम रूटीन या कुछ थोड़ा स्पेशल? मॉरिसविल में अब ओपन है रच्चा बंडा फूड ट्रक। प्योर वेजिटेरियन, फ्रेश, लाइट और बिल्कुल फील गुड फूड। वॉक एंड चिल स्पेस, ह्यूज पार्किंग, नो स्ट्रेस, इजी एंट्री। एवरीडे ओपन बिटवीन 5 PM टू 10 PM, मंडे टू संडे। तो दोस्तों को बुलाओ, चाय पे मिलो और बनाओ छोटी छोटी यादें जो याद रह जाए। 3611 डेविस ड्राइव, मॉरिसविल। कॉल करे 9842540111। रच्चा बंडा, एक बार आए तो रोज आए।

0: पीढ़ियों से हम निभाते आए हैं 22 कैरेट खरा रिश्ता। आप भी एक नए रिश्ते की शुरुआत करें राज ज्वेल्स नॉर्थ कैरोलिना।
1: नॉट एवरी रेस्टोरेंट बिकम्स एन एक्सपीरियंस, बट सोल फ्लेवरस्केप ऑफ इंडिया इज अ जर्नी थ्रू टेस्ट, ट्रेडिशन एंड अनफॉरगेटेबल फ्लेवर्स।
2: फ्रॉम क्रिस्पी दिल्ली स्टाइल आलू टिक्की चाट, फ्लेवरफुल समोसा चाट, टू द सिग्नेचर सोल दाल बुखारा,
1: एंजॉय फ्रेश सिजलिंग वेज एंड नॉन वेज स्टार्टर्स पेयर्ड परफेक्टली विद ओवन फ्रेश चूर चूर नान मेड विद लव एंड फ्रेश इंग्रेडिएंट्स।
2: प्लानिंग योर बर्थडे, वेडिंग, ग्रेजुएशन पार्टी, कॉर्पोरेट गैदरिंग और फैमिली सेलिब्रेशन?
1: Ask about customized catering menus at reasonable prices, crafted specially for your event with authentic Indian flavors everyone will love.
2: And don't forget the amazing custom cakes, beautifully designed and perfect for every celebration.
1: Whether it's dinner with family, chai with friends, or your next big event, Soul Flavor Escape of India. Escape into flavors, experience the soul of India. Soul, where every dish is poetry. Visit us today at 301 Glenwood Avenue, 190, Raleigh. Call 919-900-7231 to reserve a table, order online or book catering services.
3: आप सुन रहे हैं नारा 101.9 FM, 99.9 FM, SD 44 1090 AM. पक्का देसी, पक्का लोकल.

0: पीढ़ियों से हम निभाते आए हैं 22 कैरेट खरा रिश्ता। आप भी एक नए रिश्ते की शुरुआत करें। राज ज्यूल्स नॉर्थ कैरोलिना।
1: नारा 101.9 FM, 99.9 FM, SD4 4090 AM, पक्का देसी पक्का लोका।

0: Discover wellness through the richness of Indian traditions. Stay tuned to Healthy Rehne Ke Liye Musical Parampara on Radio Naira.
1: आज का प्लान क्या है? सेम रूटीन या कुछ थोड़ा स्पेशल? मॉरिसविल में अब ओपन है रच्चा बंडा फूड ट्रक. प्योर वेजिटेरियन, फ्रेश, लाइट और बिल्कुल फील गुड फूड. वॉक एंड चिल स्पेस, ह्यूज पार्किंग, नो स्ट्रेस, इजी एंट्री. एवरीडे ओपन बिटवीन 5 PM टू 10 PM मंडे टू संडे. तो दोस्तों को बुलाओ, चाय पे मिलो और बनाओ छोटी छोटी यादें जो याद रह जाए. 3611 डेविस ड्राइव, मॉरिसविल. कॉल करें 9842540111. रच्चा बंडा, एक बार आए तो रोज आए.
2: नॉट एवरी रेस्टोरेंट बिकम्स एन एक्सपीरियंस, बट सोल फ्लेवरस्केप ऑफ इंडिया इज अ जर्नी थ्रू टेस्ट, ट्रेडिशन एंड अनफॉरगेटेबल फ्लेवर्स.
1: फ्रॉम क्रिस्पी दिल्ली स्टाइल आलू टिक्की चाट, फ्लेवरफुल समोसा चाट, टू द सिग्नेचर सोल दाल बुखारा.
2: Enjoy fresh sizzling veg and non-veg starters paired perfectly with oven-fresh chur chur naan made with love and fresh ingredients.
1: Planning your birthday, wedding, graduation party, corporate gathering or family celebration?
2: Ask about customized catering menus at reasonable prices, crafted specially for your event with authentic Indian flavors everyone will love.
1: And don't forget the amazing custom cakes, beautifully designed and perfect for every celebration.
2: Whether it's dinner with family, chai with friends, or your next big event, Soul Flavor Escape of India. Escape into flavors, experience the soul of India. Soul, where every dish is poetry. Visit us today at 301 Glenwood Avenue, 190, Raleigh. Call 919-900-7231 to reserve a table, order online or book catering services.
3: आप सुन रहे हैं नारा 101.9 FM, 99.9 FM, SD 4 14 90 AM. पक्का देसी, पक्का लोकल.

नया साल, नई उम्मीदें, नए गाने, नए सपने, नई बातें नए साल पर, सब कुछ नया सिर्फ रेडियो नायरा पर।

WCMC FM Holly Springs, 99.9 FM HD4, W270 DT Durham, 101.9 FM WDUR Durham.

Good morning. Hello. Hi. Namaste. I am back on 101.9 FM, 99.9 FM HD4 for 90 AM and 99.9 FM HD3 for Telugu. Naira se main hu aapki apni Monica aur aap sun rahe hain Trinilun Center. Well, good morning. Morning hai ji aur wahi apna purana routine shuru hai. Ghar se office, travel, work aur bhai kaam ka tension. बट फिकिंग नॉट, आपके डे को रिलैक्सिंग बनाने के लिए मैं आपको ट्राइंगल की स्पेशल मसालेदार खबरें सुनाने वाली हूँ और ऑब्वियसली मस्ती तो कंटिन्यू चलते रहने वाली है. वैसे अभी तक ढेर सारी गपशप चल रही थी आपकी हमारे दोस्तों के साथ और नाउ मेरी बारी है आपको एंटरटेन करने की. सो गेट रेडी, मैं ढेर सारी इवेंट अपडेट आपको देने वाली हूँ और हमारे ट्राइंगल में क्या हलचल होने वाली है सब कुछ आपको बताने वाली हूँ. इसीलिए कहीं जाइएगा नहीं, सुनते रहिए मोनिका के साथ रेडियो

0: पीढ़ियों से हम निभाते आए हैं 22 कैरेट खरा रिश्ता। आप भी एक नए रिश्ते की शुरुआत करें। राज ज्वेल्स नॉर्थ कैरोलिना।
1: आज का प्लान क्या है? सेम रूटीन या कुछ थोड़ा स्पेशल? मॉरिसविल में अब ओपन है रच्चा बंडा फूड ट्रक। प्योर वेजिटेरियन, फ्रेश, लाइट और बिल्कुल फील गुड फूड। वॉक एंड चिल स्पेस, ह्यूज पार्किंग, नो स्ट्रेस, इजी एंट्री। एवरीडे ओपन बिटवीन 5 PM टू 10 PM मंडे टू संडे। तो दोस्तों को बुलाओ, चाय पे मिलो और बनाओ छोटी छोटी यादें जो याद रह जाए। 3611 डेविस ड्राइव, मॉरिसविल। कॉल करें 9842540111। रच्चा बंडा, एक बार आए तो रोज आए।

ये ऑसम गाना आपने एंजॉय किया ऑन 101.9 FM, 99.9 FM HD4 for the 90 AM and 99.9 FM HD3 for Telugu Naira से मैं हूँ आपके अपनी मोनिका और आप सुन रहे हैं ट्रायंगल डोंट एंड टॉक. वेल हमारे ट्रायंगल में ब्लोविंग रॉक चैरिटी हॉर्स शो हंटर जंपर फोर्थ डिवीजन सेलिब्रेट होने वाला है. द हंटर जंपर डिवीजन ऑफ ब्लोविंग रॉक चैरिटी हॉर्सेस शो फोकसेस ऑन फीट ऑफ एलिजिबिलिटी एंड स्ट्रेंथ विद द फोर्थ जंप ऑफ द टर्न दैट हॉर्सेस एंड राइडर्स हैव टू नेविगेट. This particular part of the show serve as preliminaries and final that show shortly after. Participants decorate their stable for added flair. Food truck will be offered delicious treat and vendors their theme wares. मजा आने वाला है, मिस मत करिए, जरूर एंजॉय करिए. फिलहाल कहीं जाइएगा नहीं, सुनते रहिए मोनिका के साथ रेडियो नायरा, पक्का देसी पक्का लोकल.

Is the Multi Dar Gaani Ke Baad one more time. Welcome Haji on 101.9 FM, 99.9 FM, LG4 for 90 AM and 99.9 FM, LG3 for Telugu. Naira se main hoon aapki apni Monica aur aap sun rahe hain Triangle Tunes and Talk. ट्रायंगल में बहुत जल्दी विंडो वर्ल्ड 450 नॉट वीक 40 स्पीडवे सेलिब्रेट होने वाला है. डोंट मिस द विंडो वर्ल्ड 450 एट नॉट वीक 40 स्पीडवे. एक्सपीरियंस थ्रिलिंग नास्कर एक्शन लाइव. सी द रोर ऑफ इंजन एंड प्योर एक्साइटमेंट ऑफ हाई स्टेक रेसिंग. पॉइंट रेसिंग इज बैक एट नॉट वीक 40. इट्स समर टाइम एंड स्पेक्टेकल्स एट वन ऑफ द नास्कर्स मोस्ट हिस्टोरिक ट्रैक. Don't miss epic tailgate and high-stake racing among the NASCAR's elite driving and team. The race is on. Multi-platinum country hitmaker is waiting for you. Filhal kahin jaiyega nahi, sun rahiye Monica ke saath Radio Nayana, pakka deshi, pakka local.

0: इस माहौल गाने के बाद वन मोर टाइम वेलकम है जी ऑन 101.9 FM, 99.9 FM, HD4, 49 AM, 99.9 FM, HD3 for Telugu, Naira Singh. मैं हूँ आपकी अपनी मोनिका और आप सुन रहे हैं फाइनल टूल्स एंड टॉक्स।
1: वेल, हमारे ट्रायंगल में बहुत जल्दी पीच पाथवे सेलिब्रेट होने वाला है। वी आर हाइडिंग 20 क्राफ्टेड ग्लास पीचेस अलोंग ट्रायल थ्रू आउट द सैंड हिल एंड इट्स योर जॉब टू फाइंड देम। Each glass of peach is one of a kind of treasure waiting to be discovered, created by friends at Starbucks. List up your hiking shoes, grab your friend or family, and hit the trail for this fun. Free adventure celebrating the beauty of nature and spirit of summer in Sandhill. Each day on our live social media will announce trail for the hunt, so stay tuned. Lal ke liye jaiye gani, sundariye Monica ke saath Radio Naira, pata local.

ये अमेजिंग गाना आपने एंजॉय किया ऑन 101.9 एफएम, 99.9 एफएम HD4 फॉर 90 एएम एंड 99.9 एफएम HD3 फॉर तेलुगु दायरा से मैं हूँ आपकी अपनी मोनिका और आप सुन रहे हैं ट्रायंगल डून सनटॉक। पता है बहुत थके आप सुबह सुबह ये वर्कलोड देखकर, बट डोंट वरी, आपको रिलैक्स फील करने के लिए ढेर सारी मस्ती कंटिन्यू रहने वाली है। वैसे आपने कुछ नोटिस किया क्या? नहीं ना, हम बातें और मस्ती करते करते सेकेंड आवर में प्रवेश कर चुके हैं और स्टिल हमारी बातें कंटिन्यू रहने वाली है। वेल, आपके साथ बातें और मस्ती तो कंटिन्यू चलते रहने वाली है, बट हमारे ट्रायंगल में क्या हलचल हो रही है, कहाँ क्या होने वाला है, कौन से इवेंट होने वाले हैं, सब कुछ आपको बताने वाली हूँ और ढेर सारे धमाकेदार गाने भी बजते रहने वाले हैं। इसीलिए कहीं जाइएगा नहीं, सुनते रहिए मोनिका के साथ रेडियो नाइट ऑफ पक्का देसी पक्का लोकल।

इस माहौल गाने के बाद वन मोर टाइम वेलकम है जी ऑन 101.9 एफएम 99.9 एफएम एचडी 4.90 एएम एंड 99.9 एफएम एचडी 3 फॉर तेलुगु नायरा से मैं हूं आपकी अपनी मोनिका और आप सुन रहे हैं ट्रायंगल टू सेंटर. वेल हमार ट्रायंगल में एनुअल क्रिसमस इन जुलाई सेलिब्रेट होने वाला है. द फेस्टिवल किक्स ऑफ ऑन फ्राइडे विद द फुल लाइनअप ऑफ एंटरटेनर्स एंड फूड वेंडर्स मेकिंग डाउनटाउन वेस्ट जेफरसन एंड परफेक्ट स्पॉट टू स्पेंड द इवनिंग. Saturday bring art and craft, specialty food and local non-profit. The festival extends throughout the downtown area along the Jefferson Ave. With the sidewalk clear for walking and browsing the shop, Ash Country Art Council hosts children activity performance through the street showcasing their magical talent and Santa and Mrs. Claus arrive straight from the North Pole. मजा आने वाला है, मिस्मत करिए, जरूर एंजॉय करिए. फिलहाल कहीं जाइएगा नहीं, सुनते रहिए मोनिका के साथ रेडियो नायरा. पक्का देसी, पक्का लोकल.

ये रोमांटिक गाना आपने एंजॉय किया ऑन 101.9 FM, 99.9 FM HD4 for 90 AM and 99.9 FM HD3 for Telugu Naira से मैं हूँ आपकी अपनी मोनिका और आप सुन रहे हैं ट्रायंगल टून्स एंड टॉक, उन खूबसूरती जो नजरों में नहीं तो दिल में बस जाए। पेश है 92.5 सिल्वर ज्वेलरी का शानदार कलेक्शन जिसमें है 22 कैरेट गोल्ड प्लेटिंग की रॉयल चमक, हर डिजाइन में छुपी है बारीकी और प्रीशियस और सेमी प्रीशियस पत्थरों की अनोखी दमक। चाहे शादी हो या खास दिन हो या कोई त्योहार हो, हर मौके पर आपको दे एक एलिगेंट रॉयल लुक, क्योंकि आप सिर्फ ज्वेलरी नहीं पहनते हैं, आप पहनती हैं अपनी खुद की पहचान। 9 जेम्स ज्वेलरी, जहां हर गहना बनाता है आपकी खूबसूरती की पहचान। बुक ओनली बाय अपॉइंटमेंट। 9 जेम्स ज्वेलरी, वेस्ट कैरी 27519। अधिक जानकारी के लिए आप कॉल कर सकते हैं +1 214 699 9454। फिलहाल कहीं जाइए या नहीं, सुनते रहिए मोनिका के साथ रेडियो नायरा, पक्का देसी पक्का लोकल।

ये ब्यूटीफुल गाना आपने सुना ऑन 101.9 एफएम, 99.9 एफएम एचडी 4 फॉर 90 एएम एंड 99.9 एफएम एचडी 3 फॉर तेलुगु। नायरा सेम है, हूँ आपकी अपनी मोनिका और आप सुन रहे हैं फाइनल रूल्स एंड टॉक्स। वेल, हमारे ट्रायंगल में बहुत जल्दी ग्रासी क्रीक एंड जेम मिनरल शो होने वाला है। एक्सप्लोर अ वाइब्रेंट वीक लॉन्ग आउटडोर शोकेसेस ऑफ जेम मिनरल फॉसिल ज्वेलरी एंड लैपिस सप्लायर एट द ग्रीसी क्रीक मिनरल एंड जेम शो इन स्प्रूस पाइन। With more than 60 vendors from around the world, this family-friendly event offers something for collector and enthusiasts alike, from stunning gemstones to laboratory tools to unique specimens hosted by Praver, Fire and Refuse to support local equipment purchase. The show features free admission and parking on site food and open to all ages. मजा आने वाला है, मिस मत करिए, जरूर एंजॉय करिए। फिलहाल कहीं जाइएगा नहीं, सुनते रहिए मोनिका के साथ रेडियो नाइन, पक्का देसी पक्का लोकल।

0: क्या गाना था यार, एक नंबर, मेरा दिल तो गार्डन गार्डन हो गया। वेल 101.9 FM, 99.9 FM, LG4, 40, 90 AM, 99.9 FM, LG3, 4, तेलुगु नायरा से मैं हूँ आपकी अपनी मोनिका और आप सुन रहे हैं ट्रायंगल रूट्स एंड टॉक।
1: वेल हमारे ट्रायंगल में टॉप ऑफ द ग्रेट कॉन्सर्ट फीचरिंग बॉब सिंक्लायर सेलिब्रेट होने वाला है। एंजॉय अ ग्रेट इवनिंग विद द बॉब सिंक्लायर एंड द बिग बील्स। द ग्रुप प्लेज अकॉस्टिक जैंट्स एंड कंट्री म्यूजिक कैरेक्टराइज्ड बाय द ग्रेट म्यूजिकल स्टोरीज इंस्पायर्ड हार्मनीज इंस्ट्रूमेंटल एंड अरेंजमेंट। Top of the great set at the stage Ella Grace and many more. Up to September, enjoy a relaxing evening filled with the fantastic live music, great company and community spirit. Please remember to bring lawn chair or a cushion for a few amphitheater sitting. You will may bring wine or beer to a concert, but please limit your consumption to the sitting area. No alcohol is allowed on the playground or in the parking lot. फिलहाल कहीं जाइएगा नहीं, सुन करिए मोनिका के साथ रेडियो नायरा, पक्का देसी पक्का लोकल।

Welcome here on 101.9 FM, 99.9 FM SG4, 4090 AM and 99.9 FM SG3 for Telugu. Naira se main hu aapki apni Monica aur aap sun rahe hain Triangle Tunes and Talk. Kaha na maine aapse ki entertainment ki koi kami nahi hogi. Dekha baaton baaton mein third hour mein pravesh kar gaya hai aur still hamari baatein continue rehne wali hai. ढेर सारी मसालेदार खबरें ट्रायंगल की कुछ अपडेट्स मैं आपको बताने वाली हूँ, पर अगर आप मुझसे बातें करना चाहते हैं, कुछ कहानियाँ कुछ किस्से शेयर करना चाहते हैं, या किसी लव्ड वन को आप बर्थडे विश करना चाहते हैं या सॉन्ग डेडिकेट करना चाहते हैं, तो आप हमें कॉल या व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं और 9192944800 पर और सुन सकते हैं ओनली ऑन रेडियो नायरा पर. फिलहाल और एक चाय का कप तैयार कर लीजिए क्योंकि पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त. सुनते रहिए मोनिका के साथ रेडियो नायरा, पक्का देसी पक्का लोकल.

The Amazing Gaana aapne enjoy kiya on 101.9 FM, 99.9 FM HD4 for 90 AM and 99.9 FM HD3 for Telugu. Naira se main hu aapki apni Monica aur aap sun rahe hain Triangle Tunes and Talk. Well, Morrisville, ready ho jao. Aapka naya hangout spot aa raha hai. Introducing Racha Banda Food Truck, authentic Indian street food ka asli swaad. Ab aapke shahar mein garma garam samosa, crispy dosas, chapati, chaat and flavor jo seedha dil tak jaye. Ye sirf food nahi, ye hai घर जैसा टेस्ट स्वीट वाले ट्विस्ट में ग्रैंड ओपनिंग स्पेशल आवर पाओ एक सरप्राइज ट्रीट ऑन द हाउस दोस्तों के साथ चिल करो फैमिली के साथ एंजॉय करो या खुद को ट्रीट दो क्योंकि राचा बांडा में है हर बाइट फील लाइक होम नाउ अराइविंग इन मॉरिस विलेज कमिंग सून राचा बांडा जहाँ टेस्ट भी मस्त और वाइब भी बेस्ट है फिलहाल कहीं जाइएगा नहीं सुनते रहिए मोनिका के साथ रेडियो नायरा पक्का देसी पक्का लोकल

पीढ़ियों से हम निभाते आए हैं 22 कैरेट खरा रिश्ता। आप भी एक नए रिश्ते की शुरुआत करें। राज ज्वेल्स नॉर्थ कैरोलिना।

ब्यूटीफुल गाना आपने सुना ऑन 101.9 FM, 99.9 FM HD4, 40 FM, 99.9 FM HD3 फॉर तेलुगु नायरा फेम है हूँ आपकी अपनी मोनिका और आप सुन रहे हैं फाइनल डूज एंड टॉक। वेल हमारे ट्रायंगल में 38 नॉर्थ कैरोलिना डक अनलिमिटेड बैंड द बिलफिश टूर्नामेंट होने वाला है। Come experience one of the most exciting and meaningful event on the Crystal Coast, the NCDU Billfish Tournament. More than just a fishing competition, this tournament is a celebration of conservation, sport fishing excellence and coastal tradition that has made a lasting impact since inaugural year in 1989. This is must-see event as the combined high-level show of sport fishing and powerful conservation mission. Over the 3 years, the big tournament has helped find our billfish protecting effort, working alongside federal agencies to establish minimized size requirement for blue marlin and promoting ethical fish practices that are now standard across East Coast. मजा आने वाला है, मस्त करिए, जरा एंजॉय करिए। फिलहाल कहीं जाइएगा नहीं, सुनते रहिए मोनिका के साथ रेडियो नायरा, पक्का देसी पक्का लोकल।

0: FM 99.9 FM LG4 4090 AM and 99.9 FM LG3 Telugu Naira से मैं हूँ आपकी अपनी मोनिका और आप सुन रहे हैं Triangles and Dogs.
1: Well, हमारा ट्रायंगल भी स्टेपिंग इनटू द क्राफ्ट समर इन सी ग्रूव सेलिब्रेट होने वाला है. ईच वीकेंड इन जुलाई पॉटर एंड स्टूडियोज विल हैव सेवरल इवेंट टेकिंग प्लेस फॉर द ग्रेट एक्सपीरियंस इन सी ग्रूव एरिया. From plain opening demonstration and some hand-on experience in clay, we hope you will plan your visit and first-hand look at the process of making pottery. Some pottery studios may require a reservation to be included in the activities, so you will need to work directly with each site individually. We look forward to visit to a sea group. मजा आने वाला है जिनको सच में interest है pottery में जरूर visit कीजिए. फिलहाल कहीं जाइए घर ही सुनते रहिए मोनिका के साथ रेडियो नायरा पक्का देसी पक्का.

था ना एक नंबर, मुझे तो मजा आ गया, आपको भी अच्छा लगा ना। वेल 101.9 FM 99.9 FM HD4 49 AM 99.9 FM HD3 तेलुगु नायरा से मैं हूँ आपकी अपनी मोनिका और आप सुन रहे हैं ट्रायंगल डून्स एंड डॉग। लगता है मैं अभी अभी तो आई थी और अभी कहाँ जाने का वक्त हो चला है, और फिकर नॉट, आपके एंटरटेनमेंट में और मस्ती में कोई कमी नहीं होने वाली। ये रेडियो नायरा का और मेरा पक्का पक्का आपसे वादा है, हमारे होस्ट और मैं आपको साथ में एंटरटेन करते रहने वाले हैं ऑन 101.9 FM 99.9 FM HD4 49 AM 99.9 FM HD3 फॉर तेलुगु रेडियो नायरा सुन रहे हैं आप। या आप प्ले स्टोर जाके हमारा ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं और एंजॉय कर सकते हैं, मस्ती कर सकते हैं हमारे साथ। वेल कल फिर मुलाकात होगी इसी वक्त इसी समय ओनली ऑन ट्रायंगल ट्यून्स एंड टॉक पर ट्रायंगल की स्पेशल मसालेदार धमाकेदार खबरों के साथ। वेल अगला गाना स्पेशल आपके लिए बजने वाला है, कहीं जाइएगा नहीं, सुनते रहिए मोनिका के साथ रेडियो नायरा, पक्का देसी पक्का लोकल। एंजॉय योर डे, बाय बाय।

0: सुनते रहिए रेडियो नहरा 101.9 एफएम 99.9 एफएम SD4 1490 AM पक्का देसी पक्का लोकल.
1: Tune up your spider sense because Spider-Man Night is here with the North Carolina Courage this Friday, July 31st. Bring the whole family to First Horizon Stadium where Courage will face off against Orlando Pride at 8 p.m. It'll be a super fun night for fans of all ages with Spider-Man themed activations, fun for the little ones and a free Spider-Man Funko Pop for the first 500 fans to arrive. Don't miss Spider-Man Night with NC Courage. Tickets at tickets.nccourage.com.
2: Hi, Carrie. Get ready for Dosa Bundi. Discover our signature variety dosas, including colorful carrot dosa, beetroot dosa, and more. Made with fresh natural vegetables and packed with flavor. Refresh your day with our cold-pressed juices and enjoy our delicious sandwiches made with fresh vegetables, paneer and homemade sauces. At Dosa Bandi, every dish is carefully prepared with fresh ingredients to nourish your body and delight your taste buds. Join us every Saturday and Sunday from 8:30 a.m. to 2 p.m. and Wednesday through Friday from 5 p.m. to 10 p.m. We look forward to welcoming you
3: to 4101 NC Highway 55, Cary, North Carolina 27519.
4: Dosa Bandi, authentic flavors, inspiring journeys made with love.
5: आज का प्लान क्या है? सेम रूटीन या कुछ थोड़ा स्पेशल? मॉरिसविल में अब ओपन है रच्चा बंडा फूड ट्रक. प्योर वेजिटेरियन, फ्रेश, लाइट और बिल्कुल फील गुड फूड. वॉक एंड चिल स्पेस, ह्यूज पार्किंग, नो स्ट्रेस, इजी एंट्री. एवरीडे ओपन बिटवीन 5 PM टू 10 PM मंडे टू संडे. तो दोस्तों को बुलाओ, चाय पे मिलो और बनाओ छोटी छोटी यादें जो याद रह जाए. 3611 डेविस ड्राइव, मॉरिसविल. कॉल करें 9842540111. रच्चा बंडा, एक बार आए तो रोज आए.
0: 101.9 FM 99.9 FM SD4 1490 AM पक्का देसी पक्का लोकल.
6: कत्ल करती हैं निगाहें कि दिल को खबर ना हो, जख्म देती है ऐसा कि दर्द का असर ना हो. हमने समझा था इश्क मोहब्बत को ही ख्याले दिल, लगता है डर बस इतना वो मेरा हम शक्ल ना हो.

सुनते रहिए रेडियो नायरा 101.9 FM, 99.9 FM, SD4 1490 AM, पक्का देसी पक्का लोकल।

0: पीढ़ियों से हम निभाते आए हैं 22 कैरेट खरा रिश्ता। आप भी एक नए रिश्ते की शुरुआत करें। राज ज्वेल्स नॉर्थ कैरोलिना।
1: आप सुन रहे हैं नारा 101.9 FM 99.9 FM SD 44 1090 AM पक्का देसी पक्का लोकल।

वाह मैन, दिस इज समथिंग ग्रेट. मतलब मैंने भी जब रामायण का ट्रेलर कर देखा है, वो लाइक बहुत अच्छा बनाया है. मजा आएगा मूवी देखने के लिए. कुछ लोगों को अच्छी नहीं लग रही है, लेकिन आई फील पर्सनली इट्स अ ग्रेट वन. आई कैन नॉट वेट टू वॉच इट, यू नो. दिस इज बॉलीवुड ब्लिस विद मी भारती ऑन योर ट्यून फ्रिक्वेंसी नायरा. एंड एक्टर नीतीश भारद्वाज, फेमस फॉर प्लेइंग लॉर्ड कृष्ण इन महाभारत, जो कि 1988 पे आई थी, ही प्रिडिक्टेड 100% ऑस्कर फॉर रामायण पार्ट वन. रिएक्टिंग टू द ट्रेलर, ही एडवाइज्ड रणबीर कपूर टू अवॉइड फिल्म्स लाइक एनिमल इन द फ्यूचर एंड रिफ्रेन फ्रॉम पोल्यूटिंग हिज वाणी, मतलब वॉइस. इन हिज इंस्टाग्राम पोस्ट, व्हाइल प्रेजिंग द ट्रेलर स्केल, विजुअल इफेक्ट्स, परफॉर्मेंसेज एंड म्यूजिक एंड एम्फसाइजिंग हिज फिल्म कुड अर्न ग्लोबल रिकॉग्नाइजेशन, नीतीश ऑल्सो अप्रिशिएटेड प्रोड्यूसर नमित मल्होत्रा. ही हाईलाइटेड द फिल्म्स प्रोडक्शन वैल्यूज एंड हैड स्पेशल वर्ड्स फॉर रणबीर कपूर एंड यश. एट द सेम टाइम, नीतीश अर्ज रणबीर टू रिकॉग्नाइज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पोर्ट्रेइंग लॉर्ड राम एंड सेड ही होप्ड द एक्टर वुड चूज फिल्म्स दैट रिफ्लेक्ट इंडियाज कल्चरल वैल्यूज इन द फ्यूचर. ही रोट, सो नो मोर एनिमल, इवन इफ द गोल्ड माइन इज ऑफर्ड टू यू, प्लीज डू नॉट पोल्यूट योर वाणी एनी मोर. भारत हैज इनफ स्टोरीज टू सटायर योर एक्टिंग प्रोवेस. दैट्स अ रियली गुड रिमार्क. स्टे ट्यून्ड फॉर मोर. आई विल बी बैक.

0: रेडियो नायरा पर बजेगा सिर्फ बेस्ट हिट्स।
1: नॉर्थ कैरोलिना, द वेट इज फाइनली ओवर।
2: द अनडिस्प्यूटेड किंग ऑफ डांस, इंडियाज लेजेंडरी प्रभु देवा इज कमिंग लाइव टू रैली। Experience an unforgettable night of spectacular dance, breathtaking performances, blockbuster music, over 100 phenomenal dancers, celebrity appearances, viral hits in Tamil, Telugu and Hindi, and non-stop entertainment.
3: Witness the phenomenon, the passion and the

0: लिविंग मींस इंडियन ट्रेडिशन. सुनते रहिए हेल्दी रहने की म्यूजिकल परंपरा ओनली ऑन रेडियो नायरा.
1: आज का प्लान क्या है? सेम रूटीन या कुछ थोड़ा स्पेशल? मॉरिसविल में अब ओपन है रच्चा बंडा फूड ट्रक. प्योर वेजिटेरियन, फ्रेश, लाइट और बिल्कुल फील गुड फूड. वॉक एंड चिल स्पेस, ह्यूज पार्किंग, नो स्ट्रेस, इजी एंट्री. एवरीडे ओपन बिटवीन 5 PM टू 10 PM मंडे टू संडे. तो दोस्तों को बुलाओ, चाय पे मिलो और बनाओ छोटी छोटी यादें जो याद रह जाए. 3611 डेविस ड्राइव, मॉरिसविल. कॉल करें 9842540111. रच्चा बंडा, एक बार आए तो रोज आए.

0: पीढ़ियों से हम निभाते आए हैं 22 कैरेट खरा रिश्ता। आप भी एक नए रिश्ते की शुरुआत करें। राज ज्वेल्स नॉर्थ कैरोलिना।
1: आप सुन रहे हैं नारा 101.9 FM, 99.9 FM, SD 44 1090 AM, पक्का देसी पक्का लोकल।

कई लोगों का कहना है कि रणबीर ने एनिमल जैसी फिल्में की हुई हैं और वो कैसे रामायण में कास्ट हो सकते हैं, बट सरप्राइजिंगली रामायण की ही एक कास्ट जो पहले हमें बहुत पसंद है, हमारी सीता माँ दीपिका छिलका जी, उन्होंने रणबीर को सपोर्ट किया है. एंड हाउ, लेट्स फाइंड आउट. This is Bollywood Bliss with me, Bharati, on your tune frequency, Naira. And you know, Deepika Chilka, who famously played Sita in Ramanand Sagar's Ramayan, has defended Ranbir Kapoor's casting as Lord Ram and Nitish Tiwari's Ramayan, hours after Nitish Bhardwaj urged the actor to avoid films like Animal going forward. The debate picked up pace on social media after a section of internet user questioned Ranbir's casting following the trailer's release. And reacting to ongoing discussion, Deepika Chilka told Hindi Rush, "We are actors. We haven't come from above. As actors, we get the opportunity to play different kind of character, and that's the biggest thing." She further added, "If someone had to do Barfi, they can do Animal. If they can do Animal, they can also play Ram. Just imagine how fortunate he is to get such a wide variety of roles. He's very lucky, and it's wonderful that he is doing it. I also feel the same way." But yeah, मतलब जब भी हम कैसा है ना, we love Ram. मतलब हमारे लिए राम भगवान सब कुछ हैं, और लोगों के सेंटिमेंट्स इतने जुड़े हुए हैं, आई कैन अंडरस्टैंड वेयर इट इज़ कमिंग फ्रॉम. लेकिन ये भी बात तो सच है ना, दैट ही इज़ एन एक्टर इवेंचुअली. वेल, स्टे ट्यून्ड फॉर मोर.

एवरी डे ओपन बिटवीन 5 PM टू 10 PM मंडे टू संडे। तो दोस्तों को बुलाओ, चाय पे मिलो और बनाओ छोटी छोटी यादें जो याद रह जाए। 3611 डेविस ड्राइव मॉरिसविल, कॉल करें 9842540111। रचा बंडा, एक बार आए तो रोज आए।

0: पीढ़ियों से हम निभाते आए हैं 22 कैरेट खरा रिश्ता। आप भी एक नए रिश्ते की शुरुआत करें। राज ज्वेल्स नॉर्थ कैरोलिना।
1: नारा 101.9 FM, 99.9 FM, SD4 4090 AM, पक्का देसी पक्का लोकल।

WCMC FM Holly Springs, 99.9 FM HD4, W270 DT Durham, 101.9 FM WDUR Durham, 14.

आज का प्लान क्या है? सेम रूटीन या कुछ थोड़ा स्पेशल? मॉरिसविल में अब ओपन है रच्चा बंडा फूड ट्रक। प्योर वेजिटेरियन, फ्रेश, लाइट और बिल्कुल फील गुड फूड। वॉक एंड चिल स्पेस, ह्यूज पार्किंग, नो स्ट्रेस, इजी एंट्री। एवरीडे ओपन बिटवीन 5 PM टू 10 PM, मंडे टू संडे। तो दोस्तों को बुलाओ, चाय पे मिलो और बनाओ छोटी छोटी यादें जो याद रह जाए। 3611 डेविस ड्राइव, मॉरिसविल। कॉल करें 9842540111। रच्चा बंडा, एक बार आए तो रोज आए।

पीढ़ियों से हम निभाते आए हैं 22 कैरेट खरा रिश्ता। आप भी एक नए रिश्ते की शुरुआत करें। राज ज्वेल्स नॉर्थ कैरोलिना।

नया साल, नई उम्मीदें, नए गाने, नए सपने, नई बातें नए साल पर, सब कुछ नया, सिर्फ रेडियो नायरा पर।

आप सुन रहे हैं रेडियो नारा 101.9 FM 99.9 FM SD4 1490 AM पक्का देसी पक्का लोकल।

0: बनके।
1: सुनते रहिए रेडियो नहरा 101.9 FM, 99.9 FM, SD4 1490 AM, पक्का देसी पक्का लोकल।

सुनते रहिए रेडियो नायरा 101.9 FM, 99.9 FM, SD4 4090 AM, पक्का देसी पक्का लोकल। We are the sounds of the streets.

this message, eh? You ready?

आप सुन रहे हैं रेडियो नारा 101.9 FM, 99.9 FM, SD4, 1490 AM, पक्का देसी पक्का लोकल।

knows what I gotta say. Love is the message, eh?

0: डांस नहीं करना, वो जाके अपने फैंस।
1: आप सुन रहे हैं रेडियो नारा 101.9 FM, 99.9 FM, SD4, 1490 AM, पक्का देसी पक्का लोकल।
2: You're listening to WCMC-FM Holly Springs, 99.9 FM HD4, W270 DT Durham, 101.9 FM WDUR Durham, 14

आप सुन रहे हैं रेडियो नायरा पर निर्वाणा नाइट्स, एंड आज शो की शुरुआत हम थोड़ी अलग करते हैं। आज मैं आपको एक बिहाइंड द सीन्स वाला कुछ सिनेरियो रहता है वो सुनाना चाहूँगा। तो आर डी वर्मन एंड कुमार शानू की ये स्टोरी है। तो हुआ यूँ कि आर डी वर्मन ने बुलाया कुमार शानू को, एक गाना रिकॉर्ड करना था उनको, एंड बुलाने के बाद कुमार शानू ने एंट्री किया। कुमार शानू बहुत लाइमलाइट में थे उस टाइम, लाइक उनका जो स्टारडम था वो काफ़ी अलग था, अप टू द मार्क। लाइक कोई भी गाना कुमार शानू के बिना कंप्लीट नहीं होता था। देन कुमार शानू गए, स्टूडियो पहुँचे, आर डी वर्मन ने अंदर बुलाया, एंड बुलाने के बाद उनको कहा कि ऐसा ऐसा है, ये है। लेकिन जैसे ही उन्होंने कुमार शानू को देखा तो उनको पहले कहा कि आपका थोड़ा हुलिया ठीक करके आओ, आप कल आओ, आज रिकॉर्डिंग नहीं होगी। ऐसा क्यों हुआ जानते हैं अगले सेगमेंट में, तब तक के लिए एंजॉय करते हैं ये गाना। आप सुन रहे हैं रेडियो नायरा 99.9 FM HD4 101.9 FM 1490 AM रेडियो नायरा, पक्का देसी।

0: Do you desire for contemporary and classic jewelry designs to fit every occasion? Khanna and Sons Jewelers has you covered for all your jewelry needs. We craft the purest 22 karat gold and 18 karat dazzling diamonds jewelry with top quality and finish. We offer best value in jewelry along with top craftsmanship and fair making charges. Gold buyback, easy 12 months interest free financing available. Come, see us for all your jewelry needs at Khanna and Sons Jewelers in Cary, North Carolina. Or call us at 919-388-3838.
1: Shopping for your next car? LeafCars.com puts everything in one place so you can search, compare, and buy with confidence. Choose from thousands of new and used vehicles backed by our trusted network of local dealerships with expert service, convenient locations, and flexible buying options. LeafCars.com makes the entire process simple. Start online and drive home with peace of mind. LeafCars.com.
2: आज का प्लान क्या है? सेम रूटीन या कुछ थोड़ा स्पेशल? मॉरिसविल में अब ओपन है रच्चा बंडा फूड ट्रक. प्योर वेजिटेरियन, फ्रेश, लाइट और बिल्कुल फील गुड फूड. वॉक इन चिल स्पेस, ह्यूज पार्किंग, नो स्ट्रेस, इजी एंट्री. एवरी डे ओपन बिटवीन 5 PM टू 10 PM मंडे टू संडे. तो दोस्तों को बुलाओ, चाय पे मिलो और बनाओ छोटी छोटी यादें जो याद रह जाए. 3611 डेविस ड्राइव, मॉरिसविल. कॉल करें 9842540111. रच्चा बंडा, एक बार आए तो रोज आए.

आप सुन रहे हैं रेडियो नारा पर निर्वाणा नाइट्स एंड कहानी में सुना रहा था। तो ये विजन था आरडी बर्मन का कि गाने के पीछे एक जो इमेजिनेशन रहती है म्यूजिक डायरेक्टर की वो इस कदर रहती है, वो इस कदर सोचा करते थे। एंड उसके बाद अगला गाना रिकॉर्ड करना था। ये जो गाना था मैं तो बताना ही भूल गया आपको, गाना था एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा, जो कि काफ़ी सुपर डुपर हिट था, फिल्म लव स्टोरी 1942 का ये गाना था। गाने के बारे में तो मुझे कुछ भी ज़्यादा कहने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि सबको पता ये गाना क्या था और आज भी ये गाने को बड़े प्यार से सुना ही जाता है। तो उसके बाद हुआ यू कि अगले दिन दूसरा गाना भी रिकॉर्ड करना था। ये जो म्यूजिकल एल्बम आने वाला था ये बहुत ही अलग एंड स्पेशल था। तो दूसरे गाने के लिए कुमार शानू को बुलाया गया एंड फिर एक उनके साथ चीज़ हुई। वो चीज़ क्या हुई ये मैं आपको अगले सेगमेंट में बताना चाहूँगा। आप बने रहिएगा रेडियो नायरा पर। आप सुन रहे हैं रेडियो नायरा 99.9 FM HD4 101.9 FM 1490 AM रेडियो नायरा पक्का देसी पक्का।

देन सेकंड सॉन्ग जो था वो गाने का रिकॉर्ड करना था कुमार शानू हमेशा की तरह, इस बार तो अच्छे से रेडी होके आ गए थे एंड गाना स्टार्ट हो गया था रिकॉर्ड करना। गाना रिकॉर्ड कर रहे थे, रिहर्सल हो रही थी, रियाज चल रहा था, रिटेक्स हो रहे थे एंड चल रही थी रिकॉर्डिंग। करते करते करते फिर कुमार शानू पूरी तरह से समझ गए कि इस गाने को गाना कैसे है। ओके, तो उसके बाद कुमार शानू ने कहा कि आरडी बर्मन दादा मैं रेडी हूँ अब मेरा फाइनल टेक देने के लिए, आप मेरा एक टेक रिकॉर्ड कर लो एंड दैट्स इट। उसके बाद आरडी बर्मन ने कहा तुम पहले तुम्हारे घर पे जाओ, और उनको बहुत ज़्यादा गालियाँ भी पड़ी, तुम घर पे जाओ, कुछ रिकॉर्डिंग नहीं कुछ नहीं, आप बाद में मिलो, घर पे जाओ आप। इस वर्ड में जब आरडी बर्मन ने कहा ऐसा क्यों कहा, मतलब क्या हुआ था उस दिन, है ना, बताऊँगा आपको ज़रूर। उससे पहले सुनते हैं अगला ये गाना। आप सुन रहे हैं रेडियो नायरा 99.9 FM HD4 101.9 FM 1490 AM रेडियो नायरा, पक्का देसी पक्का।

0: आपने एंजॉय किया एक गाना, एंड गाना था वो आखिर में काफ़ी ब्यूटीफुल। गाने से याद आया कि गाने के बारे में हम बात कर रहे थे। हाँ, तो हुआ यू कि कुमार शानू को आर डी बर्मन ने कह दिया कि आप जाओ, अभी आओ मत। ये कहने के बाद फिर टीम मेंबर से उन्होंने पूछा कि ऐसा क्या हो गया, मेरी गलती क्या थी, मतलब क्यों दादा मेरे साथ इस तरह का बिहेव कर रहे हैं। तो एक टीम मेंबर ने कहा कि दादा जब गालियां देते हैं तो उन्हें गाना काफी अच्छा लगता है, दैट्स व्हाई उन्होंने आपको गाली दी। पर कुमार शानू ने कहा कि अरे यार, मैंने तो गाना रिकॉर्ड ही नहीं किया, रिकॉर्डिंग हुई ही नहीं, तो ऐसा क्यों कहा। बाद में टीम मेंबर से पता चला कि आप जब रिहर्सल कर रहे थे, रिटेक दे रहे थे, तभी आपकी रिकॉर्डिंग जो है वो चालू की गई थी एंड आपका फाइनल टेक दादा को मिल गया था। तो ये गाना रिकॉर्ड ऑलरेडी हो चुका है, इसलिए आप ज़्यादा सोचिए मत, दादा बहुत खुश है। तो ऐसे थे आर डी बर्मन। एंड गाना था कुछ ना कहो, ये भी गाना कमाल का था, बताने की ज़रूरत है।
1: आप सुन रहे हैं रेडियो नायरा 99.9 एफएम एचडी 411.9 एफएम 1490 एएम रेडियो नायरा, पक्का देसी पक्का लोकल।

WCMC-FM Holly Springs, 99.9 FM HD4, W270 DT Durham, 101.9 FM WDUR Durham, 14.